होगा तेरे रूबरू एक दिन, तेरे ही किसी अजीज की सिफारिश लेकर। मेरी तो तू नहीं सुनेगा मुझे पता है, वही आएंगे मेरे साथ मेरी गुजारिश लेकर।

वापस आ गया स्टूडियो दे विच ते तुसी सुन रहे हो सांझी आवाज रेडियो दा प्रोग्राम सत श्री अकाल मेलबर्न तुहाडी अपनी होस्ट एंड दोस्त तनु दे नाल सांझी करदे आ एक तुहाडे नाल बड़ी ही मोटिवेशनल जी स्टोरी एक तितली दे संघर्ष दी कहानी एक कहानी सानू सिखाउंदी है कि जो सानू जिंदगी सिखाउंदी है या साडी जिंदगी च आउण वालियां मुश्किलां साडे लई सजा नहीं सगो साडी ताकत बनाउण दा तरीका हुंदियां ने। एक दिन एक आदमी अपने बाग विच टहल रहा सी तां उहदी नज़र निक्के जिहे ककून ते पई ते उस दे अंदरों एक तितली बाहर निकलण दी कोशिश कर रही सी। ओह बड़ी देर तक उस नूं देखदा रहा। तितली बहुत संघर्ष कर रही सी। ओह वार वार कोशिश करदी पर बाहर ना आ सकदी। आदमी नूं उस ते तरस आ गया तां उसने सोचिया बेचारी किन्नी तकलीफ चा क्यों ना मैं इसकी मदद करदा। ओह घरों एक छोटी जी कैंची लियाया ते उसने ककून नूं थोड़ा जिहा कट दिता। तितली बाहर तां आ गई पर उसके खंभ सुके हुए सन ते शरीर कमजोर सी। ओह उड्डन की कोशिश करती रही पर कदे उड ही ना सकी। कुछ समय बाद वह जमीन ते ही रह गई। उस आदमी नूं समझ नहीं आया कि यह की हो गया। बाद विच उसने एक विज्ञानी नूं पुछया तां विज्ञानी ने उन्हूं मुस्कुरा के जवाब दिता कि तितली नूं ककून विचों अपने आप निकलण लई जो संघर्ष करना पैंदा है उही संघर्ष उस दे शरीर विचों तरल पदार्थ नूं खंभां तक पहुँचाउंदा है। उसे नाल उस दे खंभ मजबूत हुंदे हन ते उह उड्डन दे योग बणदी है। तुसी उसकी मदद तो की पर उसकी उड्डन की ताकत नूं खो लिया। तो साडी जिंदगी विच वी कई बार एवें ही हुंदा आ। असी अक्सर कहिंदे आ कि मेरी जिंदगी च इन्नियां मुश्किलां क्यों ने, मेरे नाल ही सब कुछ क्यों हो रहा, या सामने वाला सक्सैसफुल हो गया मैं क्यों पिछे रह गया। पर शायद कई बार वह मुश्किलां ही सानू उस इंसान विच बदल रही हुंदियां ने जिस दा असी सुपना देखिया हुंदा आ। सोना भी अग विच तप के ही गहना बनता है, हीरा भी दबा सह के ही हीरा बनता है। अते इंसान की गल करिए तां इंसान की लाइफ च जिदा जिदा संघर्ष हुंदा आ उहनूं होर मजबूत होर स्ट्रोंग बनाउंदा आ। तो जेकर तुहानूं जिंदगी विच कदे भी कोई राह औखा लगे तो यह ना सोचो कि रब ने तुहानूं छड्ड दिता है। शायद उसने तुहानूं बहुत उच्ची जगह ते लैके जाना आ जां तुहानूं आसमान तक फैलाउणा आ, इसलिए उह औखियाईआं राहीं तुहाडियां जड़ां नूं मजबूत कर रहा है। तां अज तो असीं अपने नाल इह वादा करांगे कि असीं अपनियां मुश्किलां तो नहीं डरांगे, उहनां तो सिखांगे ते जे कोई साडी लाइफ च कोई मुश्किल आउंदी आ तां उहनूं पॉजिटिवली फेस करांगे, एक पॉजिटिविटी नाल लवांगे कि इह ने मेरे लई कुछ अगे चंगा ही करना आ। तूफान हमेशा दरखत दियां जड़ां नूं होर मजबूत करदा है। तो याद रखो जिस दिन तुसी हार मनन दी सोच रहे होवोंगे हो सकता है उसे दिन तुहाडी जित सिर्फ एक कदम दूरी ते होवे तुहाडे नालों। तो संघर्ष तो कदे ना डरो क्योंकि तितली नूं उड्डना उस दे संघर्ष ने ही सिखाया सी। उम्मीद है कि तुहानूं अज दी कहानी पसंद आई होवेगी ते जेकर तुसी अपनी लाइफ दे किसी हार टाइम चो गो थ्रू हो रहे हो या निराशा च गिरे हुए हो या थोड़े कोई वीजे दा इशू चल रहा, थोड़ी कोई जॉब दा इशू चल रहा आ, तो यह ना सोचो कि जे अज आला टाइम थोड़ा औखा आ तो कलू भी औखा ही रहूगा, जे अज औखा तो कल सौख ने आना ही आना आ। उम्मीद करनी आ कि अज की कहानी थानू वधिया लगी होवेगी। सुनने एक गीत ते फिर वापस आके करदे आ कुछ होर गल्लां बातां थोड़े नाल।

वापस आ गए हैं स्टूडियो दे विच ते तुसी सुन रहे हो सांझी आवाज़ रेडियो दा प्रोग्राम। सत श्री अकाल मेलबर्न, तुहाडी अपनी होस्ट एंड दोस्त तनु दे नाल। निगाह मारदे हां कुछ अज दीआं खबरां दे उपर। आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की वरतों नूं लैके नवें नियम तैयार कर रही है। मकसद यह है कि सरकारी फैसलों विच आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की वरतों पर्दाफाशी ते जिम्मेवार ढंग नाल होवे अते पिछलियां गलतियां वर्गियां स्थितियां तो बचिया जा सके। पिछले हफ्ते हुए टेलस्ट्रा दे नेशन वाइड आउटेज तो बाद कंपनी ने प्रभावित गाहकां नूं कंपनसेशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दिती है। इस घटना की जांच भी जारी है तां जो भविख विच अजिही समस्या नूं रोकिया जा सके। जेकर तुसी कार चलाउंदे हो तां इह खबर तुहाडे लई है। फ्यूल प्राइसिस विच हाले भी उतरा चढ़ा देखण नूं मिल रहे हन। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट और इंटरनेशनल टेंशनस कारण कीमतों में अजे भी बदलाव आ सकता है। इसलिए भरन तो पहला लोकल फ्यूल प्राइसिस चैक करना फायदेमंद रहेगा। जेडे लोग ट्रैवल कर रहे ने या करना चाहते ने उन्होंने लिए गुड न्यूज़ आ। क्वांटस एंड वर्जिन आस्ट्रेलिया ने अपनिया वड्डियां समर फ्लाइट सेल्स शुरू कीतियां ने। कुछ डोमैसटिक फेयर्स $49 तो शुरू हो रही ने, जबकि कई हॉलीडे डेस्टिनेशन लिए भी स्पैशल ऑफरस उपलब्ध हैं। जेकर तुम छुट्टिया की प्लैनिंग कर रहे हो या करना चाहते हो तो दैट्स राइट टाइम फॉर यू। ब्रिस्बेन विच हो रही BMX वर्ल्ड चैंपियनशिप नू तेज हवावां कारण प्रभावित होना पिया, पर आस्ट्रेलियन राइडर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। क्विंसलैंड दे जैसी एसमस ते जॉश जॉली ने अपने अपने वर्गों विच गोल्ड मैडल्स जीते अते आस्ट्रेलिया दा नाम रोशन किया। MJ द म्यूजिकल ने आस्ट्रेलिया दा अपना सफल नैशनल टूर खत्म कर लिया है। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन अते पर्थ समेत देश भर विच 500 तो वध परफॉर्मेंसिस तो बाद इस प्रोडक्शन दा टूर समाप्त हो गया है। इह सन कुछ अज दीआं खबरां ते सुणदे आं गल्लां ते फिर वापस करदे आं कुछ होर गल्लां बातां तुहाडे नाल।